0: बाय नेट को बाय वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट रु 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया जरान को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आफ्नो लागि एक महीना फ्री इंटरनेट बाय नेट अब सबै कनेक्टेड।
1: नाक कान तथा घाटी रोग को उपचार सेवा अब सुवर्ण मेडिकल हल घोराही दांग में।
2: नाक कान तथा घाटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुवर्ण बुढामगर द्वारा प्रत्येक दिन बिरामी चेक जाँच भइरहेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौ। सम्बन्धित रोगका बिरामीले समयमै सम्पर्क गरी आफ्नो रोगको पूर्ण निदान गर्नुहोस्।
1: अन्य सेवाहरू
3: हाड जोर्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर आयाम गौतमद्वारा दैनिक बिरामी चेक जाँच भइरहेको जानकारी गराउँदछौ। बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर बसन्त खत्रीद्वारा दैनिक बिरामी चेक जाँच भइरहेको जानकारी गराउँदछौ।
4: प्रत्येक दिन डाक्टर नवराज केसीद्वारा बिरामीहरूको चेक जाँच तथा उपचार सेवा।
5: फोनबाट पनि नाम दर्ता गर्न सकिनेछ।
6: सम्पर्क सुवर्ण मेडिकल हल घोराही 14 आर्मी रोड। सम्पर्क फोन नम्बर 082-561-6994। सम्पर्क मोबाइल नम्बरहरू 98578-30145, 98478-30153 र 98649-41944।
7: होइन भाइला, लखर लखर कहाँ हिँडिस्?
8: कहाँ हुनु हो काका, यसो चौतारोतिर घरमा बस्दा बस्दा दिक्क लाग्यो, टाइम पासको लागि निस्केको नि काका।
7: अरे केटा, उमेर जोजाङर छ।

0: बाय नेट को बाय वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया जडान को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आफ्नो लागि एक महीना फ्री इंटरनेट बाय नेट अब सबै कनेक्टेड।
1: तपाईं यति बेला सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम ट्रिपिङ टाइम। यदि तपाईँ पनि आफूलाई मन परेको गीत सुन्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 568-54 नम्बर डायल गरेर आफूलाई मन परेको गीत सुन्न सक्नुहुन्छ।

थाकैकन असिया लग्न ओ बाहर बीचकन संगठनको गतिविधि हेर्न प्रवृत्ति रलक उल्लेख गरिरहल आप संगठनको गतिविधिमा सक्रो सक्कुजना सक्रिय हुकन लाग पर्दा कति उहाँसे कौन जाइन थे जिम्मेवारी से पञ्छ निहुना बटुवा रखल कार्यक्रम प्याप्सन दाङको अध्यक्ष निर्मल न्युपाने तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख माधव ओली जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई दाङका प्रमुख धन बहादुर केसी तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विनिल केसी अडिटर्स एसोसिएसन दाङका अध्यक्ष ललित बहादुर घरती युवा व्यवसाय विमल रिजाल ओ शैक्षिक अभियन्ता हिमाल बाबु डाङ्गी लगायत निजी क्षेत्र से शिक्षा क्षेत्र में पुगिलक योगदान संस्थागत एकता ओ शैक्षिक सुधार के विषय में धारणा धरल रह अधिवेशन के अवसर में विभिन्न क्षेत्र में योगदान पुगिना व्यक्ति को नकला सम्मान ओ पुरस्कृत करगिल रह जिला अध्यक्ष भोजराज निपाने विशेष प्रवेश ओ स्वागत मंतव्य से शुरू हिल कार्यक्रम का सहजीकरण जिला सचिव हरिप्रसाद भंडारी से करल रह ओ बीच में आज जो बंद सत्र से लौ जिला कार्य समिति चयन गर्जिना अध्यक्ष न्युपाने जानकारी दिएर राष्ट्रिय साना सहकारी खानेपानी उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष खेमराज उलिसले स्वच्छ तथा सुरक्षित खानेपानी नागरिकको मौलिक अधिकार हुलक बटुवा रखल मानपुर गौरी डाँडा खानेपानी उपभोक्ता संस्थाको 73 अधिवेशनहरू सम्बोधन गर्दै उहाँले खानेपानीको दायित्व सरकारले लिए पर्नामा जोड़ दिएर रखल उपभोक्ताको मेहनत ओ लगानी से संचालन तथा संरक्षण हुई थियो खानेपानी संस्था उप विद्युतमा 13% कर लगाकर जनताना थप आर्थिक भार पर्न काम हुईलक वहाँका कार्यालयहीन विद्यमान ऐन तथा कानूनमा खानेपानी उपभोक्ता संस्था खारिजी तथा विघटन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न जनतासे आपन जो पहलो लगानीमा संचालन गर्लक संस्थाको अधिकार उपरको हस्तक्षेप हुईलक ओली बटुवा रखल जनताको सहभागिता ओ लगानीमा संचालित खानेपानी संस्थाको संरक्षण गर्दै उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न पर्न उहाँ जोड़ दिएर रखल संस्थाको अध्यक्ष भूपबहादुर केसीको अध्यक्षतामा हिलोक साधारण सभामा सचिव मिन्द्राज ओली ओ खोसा अध्यक्ष कविराज ओलीसले प्रस्तुत गर्लक वार्षिक प्रतिवेदन छलफल पाशा सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिगेल बा संस्थाको उपाध्यक्ष कविराज ओलीको स्वागत मन्तव्यसे शुरू हुलो कार्यक्रमको सहजीकरण सचिव मिन्द्राज ओली करल रह ओ लुम्बिनी बालबालिकाको सिकाई उपलब्धि कमजोर दिगिल्बा लुम्बिनी प्रदेशको 32 स्थानीय तहका 34 गणना क्षेत्रमा 680 घर परिवारमा कर्लक अध्ययनले कक्षा चारका बाल बालिकाको सिकाई उपलब्धि कमजोर देखिल्बा असार नेपालको नेपालसे 5-16 वर्ष उमेर समूहका बाल बालिका हन घरमा जो पुक्कन सरल मौखिक प्रशिक्षण मार्फत गणित ओ पठन सिपको मूल्यांकन गरिगिल रह अध्ययन अनुसार कक्षा 4-59.91% बाल बालिकाका गणितमा 36.84% से ओ भाषामा न्यूनतम दक्षता हासिल करलबाट गणित ओ भाषामा दुनू विषयमा न्यूनतम दक्षता हासिल गर्न बाल बालिकाको संख्या 29.36% खेल्बा राष्ट्रिय स्तरमा कक्षा 4 का बाल बालिका मध्ये गणितमा 54.8% भाषामा 35.13% दुनू विषयमा 28.4% न्यूनतम दक्षता हासिल गर्लक प्रतिवेदनमा उल्लेख बा लुम्बिनीका अवस्था राष्ट्रिय औसतसे कुछु मजा देखिल सफे समग्र सिकाई उपलब्धि सन्तोषजनक निरलक अध्ययन देखा राखल प्रतिवेदनसे बाल बालिकाको सिकाई कमजोर हुनामा प्रारम्भिक सिकाईमा हुन ढिलासँग घरको सिकाई वातावरण पुस्तकको पहुँच ग्रामीण ओ शहरी क्षेत्रको अन्तर ओ घरमा बोल्जिना भाषा से समेत प्रभाव पर्न देखिल्बा हुइठा त आज थारू भाषक मध्यपश्चिम खबर अत्रह कालसुन्जाफे थारू भाषक मध्यपश्चिम खबर सुन सिक्ने बाटी अखसक खबर मसे समाचार कक्षक सक्कु संगरेनसँग मैशालिक राम चौधरी विदाहिटु रिजी मध्यपश्चिम ओनिटी रवि राम राम।

मैं तेरे को बाद में फोन करता हूँ। एक मिनट, दूरों के इधर ये बार है, कोई सरकारी दफ्तर नहीं, तू निकल यहां से, तेरी मेरी नहीं निभेगी।